0: वायनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784 94 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। विश्वको सक्रुइन्से भारी ढ्याङ त्रिशूल अवस्थित दाङक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल घोराईको महानगरपालिका 5 धारपानी स्थित श्री पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गणमा सञ्चालन हुन शिवपुराण तथा श्रृंगारिक महाआरतीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगलबा। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आज पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गरिकन आगामी साउन 1 गते से भदौ 1 गतेसम्म मन्दिर परिसरमा सञ्चालन हुन शिवपुराण तथा श्रृंगारिक महाआरतीको सबको तयारी ओ विस्तृत कार्यक्रमका तालिका सार्वजनिक लखो। अनुष्ठान अवधिभर देश विदेश दर्शनार्थीको नक्ला लक्षित गरिकन मन्दिर प्राङ्गणमा जो निशुल्क भण्डाराको व्यवस्था मिलागिलक आयोजक जना राखल। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ती पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारीले दाङको धार्मिक पर्यटन हन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रवर्धन गर्न उद्देश्य यी वृहत धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना गरिगिलक बटुवा राख्ल। उस्ताङको मन्दिरको सचिव विष्णुराम आचार्यले धारपानी क्षेत्रको समग्र विकासकला करिब 90 करोड़ रूपियाँ बराबरको वृहत गुरू योजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण कार्य हुइति अलग जानकारी दिराख्ल। मन्दिर क्षेत्रमा 108 गौमुखी धारा पार्क ओ तलाव निर्माण होसकलक उल्लेख गर्दै सचिव आचार्यले अब सुनकोट डाँडासम्म झण्डै 5,000 सिडी ओ 31 क्विन्टलको विशाल घण्ट निर्माण गर्न ऐतिहासिक योजना अगाडि बढ़ागिलक जानकारी दिराख्ल। मूल आयोजक समितिले साउन 1 गते हुन भव्य उद्घाटन समारोहमा उपस्थित होकन पुण्य कमाएका सक्कु श्रद्धालु भक्तजन संचारकर्मी तथा सरकारवाला निकाय हन हार्दिक निमन्त्रणा गरिराखल। दाङमा हुलाक मार्ग मार्फत घरमजो राहदानी सेवा पुगिन उत्कैकन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओ हुलाक निर्देशनालय दाङबीच सम्झौता हुइलसेफे नागरिक फरि इच्छुक निदेखिल हुइट अनि निश्चित शुल्क लेखन हुलाक मार्फत नागरिक हुकनक्सी घरमजो पुगकन सम्झौता हुइल करिब 2 महिनाको अवधिमा सेवाकलाग 2 दिन जनसेकेल इच्छुक देखा राख्ल। हुलाक निर्देशनालय दाङको निमित्त हुलाक निर्देशक शुभारम बस्नेत अनुसार हुलाक मार्फत राहदानी बुझ्ना कैकन 2 जनसे फारम भरलबाट दाङमा जेठ महिनामा राहदानी लाग बायोमेट्रिक करागिलक 1,142 जना मध्ये हुलाकसे घरमजो राहदानी बुझ्ना 1 जनकेल तयार दिगिलक निमित्त हुलाक निर्देशक बस्नेत बटुवा राख्ल। कलसे असार महिनामा 1 जनसे घरमा राहदानी पूरा देखलाक फारम भरलबाट राहदानी बनाक्न ऐना नागरिक हुनलाई घरमजो राहदानी बुझाइकलाग 55 रूपियाँ शुल्क लग्ना हुइल पाछ। अधिकांश से निकर्ना करलक हुलाक निर्देशक बस्नेटक काहीबाटिन। संघीय सरकारको 100 दिने कार्ययोजना अन्तर्गत वैशाख 31 गते दाङमा राहदानी घरमा पुगिना कैकन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओ हुलाक निर्देशनालय बीच सम्झौता हुइल रह। घरमजो राहदानी बुझ इच्छुक व्यक्ति लाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय मज हुलाक काउन्टर स्थापना करगिल्बा। काउन्टरमा पुस्ना ऐना कर्लसेफे 55 रूपियाँ लग्ना पटवेल पाछ मन निकर्ना कर्लक निमित्त हुलाक निर्देशक बस्नेत बटुवा राख्ल। ऊ विषयमा रहकन हुलाक निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक शुभारम बस्नेत हन घरमजो राहदानी पुगिना सेवा काकर प्रभावकारी हुइने स्याकल कैकन आपकसीको अगाडि बहर्ना कैकन पुछलबाट। पद्मोदय पब्लिक नमूना माध्यमिक विद्यालय से व्यवस्थापन समिति चुनाव बिथोल्न उद्देश्य से मतदान में खड्गिलक अधिकृत उपर मोबाइल छ्यापकन अभद्र व्यवहार गर्न एक व्यक्ति हुन प्रहरी से पक्राउ गरिराखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अनुसार घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 रतनपुर बस्ना 42 वर्षीय उत्तम बुढाथोकी हुन आज नियन्त्रणमा लेगिलक हो। असार 27 गते बिहानकन निर्वाचनको मतदान अधिकृत समेत रलक घोराई उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका शिक्षा अधिकृत 48 वर्षीय अजय बोहरासे चलिलक रा 1/10/42 नम्बरको मोटरसाइकल रोकन बुढाथोकीसे उहाँ शरीरमा मोबाइल छर्ककन ओ घटना पाछ फरार हुइलक प्रहरीको काहीबाटिन। उक्त घटना पश्चात असार 28 गते दाङ जिल्ला अदालत घोराइसे बुढाथोकी विरूद्ध अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता होकन पक्राउ पुजी जारी गरल रह। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेम बहादुर केसीका अनुसार फरार हुरलक बुढाथोकेन खोज तलाश गर्न क्रममा आज नियन्त्रणमा लेखन हाल थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढ़ागिल्बा।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल जिल्ला संगठन समिति दाङसे बजारमध्ये गिलक खाना पकिना ग्यासका अभाव कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर सरकार ओ सम्बन्धित निकायसे तत्काल प्रभावकारी कदम चाल माग राखल। पार्टीका जिल्ला सचिव मोतीराम खड्काद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारसे जनताको अधिकार आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर निष्कर्षक आरोप लगाएकी बा। विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाकन नागरिकन व्यवस्थित करागिलक किसान से खेतीकलाक आवश्यक मल निपैलक बजेट मार्फत जनता उपर थप कर्क भार बढ़ागिलक तथा लघु वित्त तथा बैंकक ऋणक कारण सर्वसाधारण समस्यामा पर्लक उल्लेख करगिल बा। उस्तक ईरान इजरायल तथा अमेरिका सम्बन्धी युद्धक कारण देखागिलक बजारमा ग्यास अभाव हुइलक कगिलसे फेर सर्वसाधारण से सहज रूपमा ग्यास निपैलक पार्टीक दावी बा। ग्यास डिलर पसल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बजारमा ग्यासक सहज आपूर्ति सुनिश्चित कैकन जनजीवन सामान्य बनाए आवश्यक पहल कर विज्ञप्ति मार्फत आग्रह करगिल बा। विज्ञप्तिमा जिल्लाभित्र पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकिना ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना कैकन कालोबजारी तथा अनुचित मूल्य वृद्धि करागिलक पागी लक्म यी बारे पार्टी जानकारी कराई सर्वसाधारण से अपील फे करगिल बा। प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक जन कार्यवाही अगाडि बढ़ागिलक पार्टी जना राखल। भुइठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षको सक्कु संग्रहसँग वैशालिक राम चौधरी विदाई टु रिरु मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाओ। सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़ने नशा प्रसूति न्यूरोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुटू नाक कान घाटी टाउको गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिलीवर ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ।

0: 99 थुप्लो 4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराहीदान फोन नम्बर 0825162110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायत

0: अत्याधुनिक प्रविधि का सेवाहरू।
1: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, सड़क विभाग ओरालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082563218।